0: back right after the commercial break.
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निज़ाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
2: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंद अवाम द खिदमत लपारा मौजूदगी चिपके डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट दैतवार परवज 10 बजो ना तरमा खाम सलूर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रस कोरे सहर 9 बजो ना तरमाजीगर सलूर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट दैतवार परवज 11 बजो ना तरमास्पिन 3 बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ती पूरी माजीगर द सलूर बजो ना तरमास होतन 8 बजो पूरे बाओपी डिकवी जमू सहूलियात 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्टको ईसीजी पेशेंट जनरेटर और नो टूल जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 दुएम नंबर दे 0336-444-5888।

0: जनरल सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर बशीर न्यूरोलॉजिस्ट यानी दरगुनो पटो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद निकाश जनरल सर्जन डॉक्टर फैसल जिया और प्लास्टिक सर्जन लेडी डॉक्टर शगुफ्ता तारिक शहाबा मौजूद हुई जमुन सहूलियात इन ICU यानी दमाशुमान दपारा दिशो सहूलत इको ECG एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेबॉरेटरी फार्मेसी ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम द मरीजान लपारा स्पेशल कमरे द रेडियो दिलबर पुवास्ता रात उनके पेशेंट दपारा ऑपरेशन लेबॉरेटरी और मेडिसन बांधे 10% नवाला 33% पूरे डिस्काउंट हम मौजूद दे पता पुख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर निस्त बाचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी टेलीफोन नंबर 09382801129 मोबाइल नंबर 2928 68।
1: वेले माल द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओहो दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732658।
3: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के बाद डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और एतवार पोरस माजीगर सलूर बजू नवाखला तरमाखाम अतो बजू पूरे और दे सरसरा डॉक्टर इमाद जमान सेब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस सहर दनो बजू नवाखला तरमाजीगर सलूर बजू पूरे ओपीडी कवि 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ECG जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड्स नो पता याद साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लार टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेन नंबर दे 0336-444-5888।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

अब तो हो चुका है प्यार मुझको ना करो इनकार लगा खबर गौर खबर फिक्र खबर पदीज गमन गौर पकार फिक्र पकार अब ना करो इनकार मुझको हो चुका है प्यार वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा। क्या बात है कैसा बात है कि प्यार हो चुका है।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: जब इंसान तंदुरुस्त है तो मुस्कुराहटों के रंग भी मदे, ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज जहां दवत दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। होम्योपैथिक जनरल हर सवाबी बल्कि इत्मीनान से और का है, जहां मरीज को समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमार होता है। तेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे इलूस से हर मरीज के लिए शिफा काज हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की हर मरीज के इलाज और एक मिशन समझते। ब्लड मैदे के मसाइल हों या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की खसाबी, थकर देर पा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होमर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं कि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए अस्पताल हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की हर मरीज के इलाज और एक मिशन समझते। ब्लड मैदे के मसाइल हों या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की खसाबी, थकर देर पा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होमर सवाबी में।

इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारानों दो पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कतासु।

0: ओके जी बस से जाना ना नूर में मया दवा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह करम अल्लाह करम मुझे तो खैर से दे बराबर दे। हाँ बराबर दी शुमाइला रड़ी के नहीं रड़ी रड़ी ईसा और सभी बच्चा माँ खुने दी वेली चले कतरी मंगते दागा खबर होगी खुजा वर्दा पे माशाल्लाह माशाल्लाह। और दाऊ ची पैसे से तो शुमाइली दाऊ ची पैसे से तो ऊंची पैसे मुकाबला सो गड़ी देखे रस्से पर 316 622 22 और ब्याज 46 खेरा बदी नंबर बाने में खेरा सासू बलहाड़ी से टेलीफोन कॉल प्रोग्राम तलाशी देखेरा प्रोग्राम के बागा शरीकों देखेरा 0316 622 22 46 और रिदुन के प्रोग्राम के। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह करम दे बच्चे सो खबर के कम जेना हरिश सिंगे बराबर बराबर दखेरा अरे शो प्रोग्राम हो रही क्या
1: बच्चा
0: मुकाबला के ऊपर खाली का ना
1: कोशिश तो
0: दादा वर्दा मंगता पता रस्ता बड़े नवर आबाजी सा नूर बाधी बगी टोलर से याद
1: खड़े
0: हम प्रोग्राम अखीर पर ऑर्डर मेहरबानी शुक्रिया थी हरिश नूर सुमंग प्रोग्राम दर अगले वाला हरिश नूर सुमंग प्रोग्राम दर अगले वाला हरिश नूर बस बल और दिन के शरीकों से कहो खलास रे कमी गया। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: यास्मीन खूर तो कम जाने खबर है कहीं खैर नंबर न ऐसे होगा ना बच्चा रूमी जान सिंह अल्लाह करम ने मुकाबला के बरखाली के ना
1: दीबला
0: के शाबाजर तो आए खा
1: तो
0: खुदा कैसा बस इतम मुकजा सही खुशहाल खुशहाल रूमी जान डेरा मेहरबानी दे जाते शुक्रिया 0316 622 22 और बिया 46 खेरा मुकाबले के जमा सारा तरदी तमाम शपक कसान अगली दिबल उर्दून के प्रोग्राम के शरीक खेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 0316 622 22 और बिया 46। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह करम ने जमा रोड सो खबर की कम जाना खबर की
2: देखेरा
0: उमर अजल मुकाबले के बरखा लिखना जवाय शाह वहाँ तकड़ा
2: शाहवाड़ी
0: माशाल्लाह कम जाना खबर की
2: उमर खबर
0: उमर तो गंदप वाला।

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: Music and Information Station 94

0: क्रीम, बेलाडोना ऑर्गेनिक क्रीम और सनब्लॉक और टॉनिक
1: सलूर सुल पिंजशल बल जकन वरदा पिंजशल बल रात हुआ या सनब्लॉक दी वर्क ईयर कर लू कना
0: सनब्लॉक नहीं था खाल करना
1: नद देखो दे उस रात हुए लेकिन सनब्लॉक बारे के जगह तो उस हुए ली
0: सनब्लॉक बेलाडोना विटामिन सी फॉर्मूला क्रीम ऑर्गेनिक क्रीम फेस वॉश
1: सही सही सही सही सही नो बिया कम यो दगा डेर ज्यादा खुख दे मतलब लगा पदी टूल हर सकी दा सुमर चीज मुंग दा बेलाडोना दा सुमर प्रोडक्ट दिखे ना दा कम कम चिताया आजकल पदी की फेवरेट स्टॉक कम यो दे ये हो रहा था पकी याद का
0: टॉनिक
1: टॉनिक स्टॉक फेवरेट दे वोली सो वजह की दिले शी लगा सो वजह दे शी स्टॉक फेवरेट दे
0: टॉनिक लगा मतलब फायदा रखा ही था ज्यादा नूरम रखा ही था टॉनिक कम रखा ही
1: सही सही सही सही सही सही जच बस्ता खुख दे उस्ता लगी नो दादा टोलो ना बेहतर खबर दा नो खल गुलो बस पैगाम और के जी आया हुई लकम कम या बेलडोना वाले इस्तेमाल अवल पकार दी के नदी वाले इस्तेमाल अवल पकार वाले ना
0: इस्तेमाल अवल पकार दिए से नजला भाई
1: सही है जबस इंशाल्लाह स्टाप खुलबाने बदवी खाम खा बेलडोना इस्तेमाल है स्टाद काल का वर्द पर जी जी वाए जी जी मोबाइल खबर
0: होगी
1: खैर देखा थैंक यू सो वेरी मच द कॉल कवल उद पारा यो जिहान मनन मेरा

0: Did you always want to be a superstar?
1: This radio station plays only music. Today's best.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
4: Just seconds away from more of your favorite music on
5: 94.
6: Your family channel.

0: a portal.
1: And all that.
2: Real talk, real life, real people, real radio. The station that just doesn't stop. 94 FM.
3: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
4: दादी रेडियो दिल पर स्तासु दजरावास।
5: असलम भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सिंह गए उमर खान टोपे ने दम अनाउंस को

0: Real talk, real life, real people, real radio. The station that just doesn't stop. 94 FM.
1: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
2: दादी रेडियो दिल पर, स्तासु दजरावास।